0: ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत आपके ही पसंदीदा मॉर्निंग शो यानी कि नॉन स्टॉप गपशप में। तो हर रोज की तरह आज भी एक विषय जरूर होगा और ऐसे भी उसमें इस कार्यक्रम में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं और बहुत कुछ है ढेर सारे गानों के साथ साथ। और फिलहाल आगाज करना चाहूंगी कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप का उस गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म कॉकटेल से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में इस गीत को सुनें।

ऐसा है दोस्तों कि मौसम संबंधी दो सूचनाएं हैं। पहला, पहले मैं बता दूं, हल्की आंधी और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवा अगले 2-3 घंटों में, यानी कि 9:45 से लेकर आगे आज 7/5/2026 को जो है कलकत्ता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना जिले के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की बहुत संभावना है।

हल्की आंधी और बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवा अगले 2-3 घंटों में 9:45 से आगे 7/5/2026 से कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना जिलों के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की बहुत संभावना है। मौसम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

अब ऐसा है ना कि आप भी सोच रहे होंगे कि मतलब नॉन स्टॉप गपशप में जानते हैं कि कोई ना कोई एक विषय होता है, तो आज के दिन कौन सा विषय है? तो विषय जो है वो मैं आपको बता दूं कि आज जो है, वैसे इंसान मतलब क्या है ना कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन आज जो विषय है ना वो मतलब ऐसा है कि खाने से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन खाने के एक सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक सेगमेंट वाली बात क्या है, तो ये एक सेगमेंट वाली बात कुछ इस तरह से है, मैं अगर आपसे कहूँ तो ये ऐसा है कि अंग्रेजी की एक कहावत है, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। और इसे हिंदी में अगर इसका सार कहूं तो सुबह राजा सा नाश्ता, दोपहर राजकुमार सा लंच और रात भिखारी या हल्का सा डिनर करें। ये स्वस्थ जीवन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए जो है बहुत ही जरूरी है। ये स्वस्थ जीवन के लिए भारी नाश्ते और हल्का रात का खाना लेने की सलाह देता है और इसी पे बातें ढेर सारी मैं आपसे साझा करूंगी, लेकिन फिलहाल ये गीत आप सभी के लिए प्रेम रतन धन पायो से शान और साथियों की आवाज में, और ढेर सारी मिठाइयां भी लाई हूं।

ऐसा है दोस्तों कि हमेशा जब हम सुबह उठते हैं ना, तो अक्सर हमारे जो लाइफस्टाइल में हो गया कि सुबह हम भागम भाग में रहते हैं, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, काम पे जाओ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पूरे दिन में अगर हम सुबह का नाश्ता बहुत हेल्दी, बहुत सॉलिड करते हैं, तो फिर हमारा पूरा दिन जो रहेगा ना, वो बहुत सेहतमंद रहेगा। हमें मतलब एनर्जी की कमी महसूस नहीं होगी। और होता क्या है ना कि ज़्यादातर लोग आजकल जो है सुबह ब्रेकफास्ट जैसे तैसे करके भागते हैं, या फिर मतलब ऑफिस जाके, स्कूल जाके सोचते हैं ब्रेक में खाएंगे, टिफ़िन में खाएंगे, और बहुत समय जो है निकल जाता है। और सबसे जो ज़रूरी बात है, विशेषज्ञों के अनुसार सबसे अच्छा नाश्ता सुबह 7 से 8 बजे के बीच कर लेना चाहिए। तो ये जो समय है ना, याद रखिएगा, सुबह 7 से 8 बजे के बीच नाश्ता, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हमें 11 बजे करें, 12 बजे करें। और अक्सर देखा जाता है कि रात के समय ना, जब लोग घर लौटते हैं शाम को, तो मतलब वो इतना हैवी इवनिंग स्नैक्स लेते हैं, और उसके बाद डिनर तो और भी हैवी हो जाता है। एज अ रिजल्ट जब आप सोते हैं, तो फिर आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, लिवर हो, किडनी हो, उनको आराम नहीं मिलता है। कहते हैं कि रात को

तो सोने के कम से कम 3 घंटे पहले आप डिनर ले ले। तो ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी बात है और हम सबके जीवन को, जीवन जो है ना वो इससे जुड़ी हुई है और इसका असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है, पड़ता है हमारे जीवन पर। तो अब आगे बढ़ते हुए क्यों ना सुन लिया जाए चॉकलेट लाइम जूस, कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हम आपके हैं कौन से।

चुटकी नुस्खे। अब ऐसा है कि कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में एक सेगमेंट रहता है आपके लिए एक चुटकी नुस्खे। अब एक चुटकी नुस्खे में मैं आज जो नुस्खा बताने वाली हूँ ना, वो हर घर में काम आएगा लगभग। ऐसा है कि मतलब आज हम खाने पीने को लेकर ही प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट के इम्पोर्टेंस पर, कि ब्रेकफास्ट सही लेना और सही समय पे लेना, उसके क्या फायदे होते हैं। तो चलिए अब आपको बता दूं, जो आज का नुस्खा है वो ये है कि आप कभी अगर सब्जी बना रहे हो मसाले वाली, ग्रेवी वाली, और उसमें अगर ऐसा हो कि कभी मतलब नमक थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो उसे कम करने के लिए पता है क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है ना चने का बेसन लेंगे, एक चम्मच डेढ़ चम्मच, छोटे मतलब चाय वाली जो चम्मच होती है उससे, और

0: उसे ना थोड़ा पानी में घोल लीजिएगा, और अगर पानी में ना घोल सके तो ड्राई भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसे चलाते रहिएगा। और इससे क्या होगा ना कि नमक जो है वो कम हो जाएगा, स्वाद अनुसार हो जाएगा, और फिर खाने में जो मज़ा आएगा बस आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो चलिए आज एक चुटकी नुस्खे में मैंने बताया कि अगर ग्रेवी वाले सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो उसे कम कैसे करेंगे।
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: ऐसा है दोस्तों कि सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। रात भर खाली पेट रहने के बाद शरीर को ऊर्जा और पोषण देने के लिए पौष्टिक नाश्ता करना बहुत जरूरी है। हिंदी में सुबह के हेल्दी नाश्ते के जो मतलब क्या बताऊं, अगर मैं कहूं कि हिंदी में अगर आपको कहूं कि वो कौन कौन से जो मतलब चीज हैं जो आप सुबह खा सकते हैं, तो क्या है ना कि हम लोग ज़्यादातर जो है ना उसे कहते हैं कि इडली। वैसे है तो ये साउथ इंडियन डिश, और इडली जो है बहुत ही सुपाच्य होता है। और इसी के साथ कहूँ पोहा लेना, हाँ उसके बाद क्या है कि आप पोहा खाइए और मतलब पराठा लीजिए, लेकिन ज़्यादा घी वाला नहीं। लेकिन ये भी है कि एकदम से घी जो है ना, वो जो काउस घी है, गाय का जो घी है, वो बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। सुबह दूध पीना और नाश्ता कर लेने के बाद कम से कम एक फल तो ज़रूर खाना चाहिए। कोई भी एक फल हो, 10-15 मिनट के गैप के बाद आप एक फल ज़रूर खाएं। और सुबह सही समय पे अगर आप नाश्ता करें, सही तरह का नाश्ता करें, चिल्ला विल्ला बना के खाएं, और मतलब और क्या, उसके बाद इतने एनर्जेटिक आप फील करेंगे कि आपको पूरे दिन जो भी काम करेंगे बड़े एनर्जी के साथ करेंगे, और किसी भी तरह के मतलब लेजीनेस नहीं होगा आपको। हेल्दी नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल सोच रही हूँ क्यों ना हो जाए एक कप गर्म चाय।

0: आज के दिन। अब अगला सेगमेंट आप समझिए गए, आज के दिन। आज के दिन में मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन 7 मई जो है इतिहास के पन्नों में किन कारणों से खास है। तो आपको बता दूं, ये जो आज आपको बताऊंगी 7 मई के जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, खास घटनाएं, वो किसी के जन्म से रिलेटेड हो, मृत्यु से रिलेटेड हो, किसी आविष्कार से रिलेटेड हो। तो ये जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो 7 मई के इतिहास में अगर देखा जाए तो देश के साहित्य जगत के लिए 7 मई का दिन इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा गया है। 1861 में आज ही के दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, जिन्हें एक कवि, लघु कथा लेखक, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंध लेखक और चित्रकार के तौर पर इतिहास में एक युग पुरुष का दर्जा हासिल है। उन्हें भारतीय संस्कृति को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराने का श्रेय जाता है। उन्हें 20वीं सदी के शुरुआती बरसों के जो भारत के सबसे प्रभावी व्यक्तित्व में शुमार किया जाता है और 1913 में उन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया और वह ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। देश दुनिया के इतिहास में 7 मई की तारीख पर दर्ज कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का भी मैं जिक्र करूंगी। वैसे मैं बता दूं कि पोचिश वैशाख यानी कि 9 मई को पड़ेगा, तो उस दिन भी रविंद्र जयंती जो है वो बंगला कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाएगा। और बात करूं 7 मई 1663 की, तो प्रसिद्ध नाटककार थॉमस किकलुंगुक द्वारा निर्मित रॉयल थिएटर की लंदन में शुरुआत हुई थी। 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुर्ग राज पर कब्जा कर लिया था। 1861 में प्रसिद्ध बंगला कवि, कहानीकार, गीतकार, नाटककार रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और 1907 में मुंबई में बिजली से चलने वाली पहली ट्राम कार चलाई गई। वहीं 7 मई 1912 को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विभिन्न श्रेणियों में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान करने की योजना की मंजूरी दी और इसकी स्थापना जोसेफ पुलित्जर ने ही की थी। 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं के वोट देने की आयु 30 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई थी और 1973 में ईटानगर को पूर्वोत्तर के खूबसूरत प्रांत अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी बनाने का काम शुरू किया गया था। वहीं 1982 में IBM ने PCDOS का वर्जन 1.1 जारी किया। 2012 में 7 मई को व्लादिमीर पुतिन ने 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 2015 में 7 मई ब्रिटेन के आम चुनाव में डेविड कैमरून फिर से प्रधानमंत्री बने, उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला।
1: आज के दिन।
0: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:34 और 52 सेकंड और इस वक्त आप जुड़े हैं दिल से दिल तक वाला चैनल यानी कि कोलकाता का दी रियल रेडियो, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो, जो कनेक्ट करता है हार्ट टू हार्ट यानी दिल से दिल तक हम जुड़ते हैं। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपका ही फेवरेट शो नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और आज हम बात कर रहे हैं सुबह के नाश्ते के इम्पोर्टेंस पर। तो ऐसा है दोस्तों कि भला खाना किसे पसंद नहीं, लेकिन सही समय पर और हेल्दी खाना खाएंगे तभी तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और ऐसा है कि मतलब सही समय पे सही तरह का ब्रेकफास्ट लेने से बहुत उसका महत्व जो है बढ़ जाता है। दिन भर के लिए आपको ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। सुबह नाश्ता करने से एनर्जी, शरीर में जो ऊर्जा का स्तर बना रहता है जिसमें आप पूरे दिन चुस्त और सक्रिय महसूस करते हैं, ये शरीर को ईंधन फ्यूल की तरह काम करता है। अगर दूसरे फायदे की बात करूं तो मेटाबॉलिज्म में सुधार और वजन नियंत्रण, वेट मैनेजमेंट। सुबह का नाश्ता जो है वो मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है, जिससे कैलोरी तेजी से जलती है और वजन नियंत्रित रहता है। ये दिन में बार बार अनहेल्दी स्नैकिंग से भी बचाता है। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल फंक्शन, पौष्टिक नाश्ता करने से जो है बहुत उस पर असर पड़ता है, आपके याददाश्त, एकाग्रता और सोचने समझने की क्षमता में सुधार होता है। ये मूड को भी बेहतर बनाता है और चिड़चिड़ापन कम करता है। हाँ जी, इसके और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बताऊंगी बताऊंगी, लेकिन बाय द टाइम क्यों ना सुन लिया जाए ये गीत बजरंगी भाईजान से। खाने पीने की बात हो और ये गीत ना सुना जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मोहित चौहान और पलक मुच्छल की आवाज में सुनते हैं इस गीत को।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

ऐसा है दोस्तों कि अगर सुबह हम जब सो के उठते हैं ना, उससे कम 2 घंटे के भीतर तो हमें नाश्ता कर ही लेना चाहिए, और वो भी हेल्दी नाश्ता करना चाहिए। और अगर थोड़ा समय लगता है बनाने में, तो कुछ ना कुछ सो के उठते हैं तो उसके 2 घंटे के भीतर ज़रूर खाना चाहिए। और गंभीर बीमारियों से बचाव होता है अगर आप सुबह हेल्दी नाश्ता लेते हैं तो। नियमित रूप से नाश्ता करने से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कम हो सकता है। और हृदय रोग, हार्ट डिजीज से बचाव में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, पोषक तत्वों की पूर्ति यानी कि न्यूट्रिएंट इनटेक, नाश्ते में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करने से शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी होती हैं, जिससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। हेल्दी नाश्ते के विकल्प जो है सब्स्टिट्यूट ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट, फल, ओट्स, पोहा, उपमा, अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स, दही, अंडे, प्रोटीन रिच, भीगे हुए बादाम। और सुबह उठने के, जैसा कि मैंने कहा, 2 घंटे के भीतर नाश्ता कर लेना सबसे अच्छा माना जाता है। अब जब अंडे का जिक्र हो ही गया तो क्यों ना आपको सुनवा दूं, वो चितालकर और मीना कपूर वाला गाना है ना, संडे के संडे।

ऐसा है दोस्तों कि मैं समझ रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह सोकर उठते हैं मान लो 7 बजे और नाश्ता करते हैं 10 बजे 11 बजे। तो ऐसे लोग जो इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे होंगे उन्हें थोड़ा गिल्ट फील हो रहा होगा ना कि हाय रे हाय क्या किया हमने, अपने सेहत के साथ खिलवाड़ किया, अब भुगतना तो खुद ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी समय है श्रोताओं, दोस्तों अभी भी समय है, जब जागे तभी सवेरा कहते हैं ना। तो अगर आप कल से नियमित समय पर हेल्दी नाश्ता करते हैं तो समझिए कि आप राजा के जीवन जिएंगे, यानी कि सारा दिन इतने एनर्जी से बूस्टेड आप रहेंगे कि बस आप हर काम सही समय पर सही तरीके से कर पाएंगे और कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी। लेकिन ये याद रखिए कि जब भी सुबह नाश्ता करें हेल्दी नाश्ता करें, और क्या है ना, अंकुरित, जैसे कि चने को भिजा के रखें, मूंग दाल को भिजा के रखें, ये जो अंकुरित अनाज है ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप चाहें तो मतलब एक छोटा सा चाट जो है वो अंकुरित चाट आप कह सकते हैं। आप क्या कीजिए ना कि ये जो अंकुरित मूंग दाल है, चना है, इस

थोड़ा थोड़ा ले लीजिए और इसमें प्याज काट लीजिए छोटा छोटा बारीक बारीक, और थोड़ा क्यूकम्बर खीरा भी काट लीजिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके पीस में, और सभी पीसेस जो है ना एक बराबर रहे। और इसके बाद लाल लाल टमाटर भी जो है थोड़ा थोड़ा करके उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। उसमें थोड़े से हरे धनिया पत्ता जो है बारीक बारीक काट कर उसमें स्प्रेड कर दीजिए। मुँह में पानी आ रहा, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और काला नमक दीजिए, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालिए, ठीक है। और क्या इसमें, अगर आप जो है अगर आप मतलब चाहें तो बॉइल्ड पटेटो भी काट के डाल सकते हैं, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं है। और इसमें आप पीनट्स भी डाल सकते हैं, पीनट्स भी डालेंगे और फिर जब आप खाएंगे तो बस जी चाहेगा कि खाते ही रहें। लेकिन आपको बता दें कि ये जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही हेल्दी भी होता है, और मेहनत भी ज़्यादा नहीं है। और इसमें तो कुक करने वाले जो है वो झमेला भी नहीं है कि आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह टमाटर धनिया पत्ता, हाँ हाँ ये कहना तो भूल ही गई, अगर आमचूर पाउडर ना हो तो ये जो नींबू है ना, नींबू भी काफ़ी काम आता है। और नींबू में जो होता है फुल ऑफ विटामिन सी, और स्वाद जो है वो भी इन्हांस करता है। तो चलिए, अगर आप खा रहे हो ऐसा नाश्ता बनाकर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी नहीं खाए हो तो कल सुबह जरूर ट्राई कीजिएगा, और आपको याद आएगा वाह सुलक्षणा तुमने क्या एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का रेसिपी बताया। चलिए इसी बात पे आपसे विदा लेना चाहेगी आपकी आज ही फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत आज के लिए, और चलते चलते आप सभी के लिए मोबाइल होटल ये जो होटल है मोबाइल गाना आपके लिए आदित्य नारायण की आवाज में फिल्म घूंघट से सुनिए। और आदित्य नारायण का साथ दिया है प्रशांत राज और साथियों ने, और इस गीत को सुनते सुनते आगे दीजिए अपनी आज ही फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। और क्या, आपका दिन मंगलमय हो।

0: है तार टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
3: नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर ठीक 3:03 पर तीन का तड़का, जहाँ होती है ढेर सारी बातें, बॉलीवुड हॉलीवुड की हॉटेस्ट रिलीजेस की बातें, साथ ही साथ बॉलीवुड के कुछ मसालेदार गपशप और साथ ही साथ जबरदस्त गाने भी। तो चलिए तीन का तड़का की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त गाने से, जो है शेखर रविजयानी की आवाज में।

तो चलिए दोस्तों, इसी तगड़े से गाने के बाद तगड़े तड़के की ओर चलते हैं सीधे। आज का मसाला थोड़ा ज्यादा ही चटपटा है, क्योंकि थिएटर में इस वक्त फिल्मों की ऐसी भिड़ंत चल रही है जिसमें हर किसी की अपनी कहानी है, लेकिन जीत किसकी हो रही है वही असली मजा है। जी हाँ, तो इतिहास वर्सेस एंटरटेनमेंट का पहला तड़का है हमारा। जैसे राजा शिवाजी ने बॉक्स ऑफिस पर तलवार निकाल ली और सीधे दिल पर वार कर रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को जिस अंदाज में पेश किया गया वो दर्शकों को सीट से बांध रहा है। करीब 52 करोड़ का आंकड़ा पार और रफ्तार अब भी जारी। मराठी सिनेमा का ये शेर अब बड़े मैदान में दहाड़ रहा है। साथ ही साथ भाई भूत बंगला, जी हाँ, भूत बंगला नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना, लेकिन असल में ये फिल्म हंसी और हॉरर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो धीरे धीरे दर्शक को पकड़ रहा है। 19 दिन बाद भी फिल्म थमी नहीं है, 231 करोड़ पार, मतलब साफ है लोग ये भूत जो है उसको पसंद कर रहे हैं। और तीसरा तड़का है दिल टूटा। जी, बॉक्स ऑफिस में एक दिन रिलीज होते ही भले ही उसका कंसेप्ट नया था पर प्यार सिर्फ एक दिन का ही मिला, लेकिन लगता है दर्शकों का प्यार भी बस एक दिन ही रहा। जी हाँ, कुल कमाई 5 करोड़ के आसपास और चौथे दिन तो बस कुछ लाख। कहीं कहानी दिलचस्प थी पर कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो असली बॉस कौन हुआ? धुरंधर 2, यह नाम अब भी बॉक्स ऑफिस पर गूंज रहा है। 48 दिन बाद भी फिल्म कमाई कर रही है और कैसे, 1700 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ फिल्म नहीं, तूफान है। तो भाई, इस हफ्ते का हाल सीधा है, कोई इतिहास लिख रहा है, कोई डर के साथ हंसा रहा है, लेकिन असली सिंहासन अभी धुरंधर 2 ही सिंहासन पर अभी धुरंधर 2 ही बैठी है। कल फिर आएंगे और देखते हैं, कल जब आएंगे तो फिर क्या हाल चाल होने वाला है। जी हाँ, कल वापस मिलूंगी मैं आपसे ठीक इसी समय। फिलहाल के लिए चलिए भूत बंगला से ही सुन लेते हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में ये गाना।

वहाँ दोस्तों दूसरे तरीके की ओर सीधे चलते हैं और बताते हैं आपको कि साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पिरिट को लेकर अटकलों पर मेकर्स ने अपडेट जारी किया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर खबरें थी कि फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ सकती है। आधिकारिक बयान में साफ किया गया कि स्पिरिट तय समय पर ही रिलीज होने वाली है। मेकर्स के मुताबिक स्पिरिट 5 मार्च 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रोडक्शन टीम ने बताया कि फिल्म का काम प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है। रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि प्रभास की यह फिल्म सलमान खान की ईद 2027 पर रिलीज होने वाली फिल्म SVC 63 से क्लैश कर सकती है। वहीं रिपोर्ट्स में दावा भी था कि मेकर्स बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचने के लिए स्पिरिट को दिसंबर 2027 तक पोस्टपोन करने पर विचार भी कर रहे हैं। अब मेकर्स के बयान के बाद साफ है कि फिल्म तय तारीख पर ही रिलीज होगी। जी हाँ, फिलहाल चलिए दोनों फिल्मों का इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते ही हमारा दूसरा गाना भी हम सुन लेते हैं और आते हैं वापस अगले लड़के के साथ।

दोस्तों, इस राज मौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म वाराणसी की शूटिंग में दिक्कतें आ सकती हैं। जी हाँ, इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद फिल्म सिटी में चल रही है। फिल्म के कुछ सीन के लिए मेकर्स को एक तालाब बनाना था जिसके लिए उन्हें 1000 लीटर पानी चाहिए था, लेकिन अब जल आपूर्ति बोर्ड ने इससे इनकार कर दिया। जी हाँ, फिल्म वाराणसी की प्रोडक्शन कंपनी ने हाल ही में राजेंद्र नगर के गगन पहाड़ स्थित फिल्म सिटी में तालाब बनाने के लिए हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को एक लेटर लिखा, 150 वाटर टैंक की मांग की थी। प्रोडक्शन द्वारा बोर्ड के प्रबंध निदेशक अशोक रेड्डी के लिए गए लेटर में कहा गया कि पानी के लिए कंपनी उन्हें टैंकर का किराया भी देगी। हालांकि बोर्ड द्वारा लेटर को रिजेक्ट कर दिया गया ना, और एक रिपोर्ट के अनुसार सेट पर पहले ही तालाब बनवा लिया गया है जिसमें 10,000 लीटर प्रति टैंकर की कैपेसिटी से 150 टैंकर इस्तेमाल होने थे। पानी को 18 मई को होने वाली शूटिंग के लिए शुद्ध करवाया जाना था, लेकिन गर्मी से बढ़ने पर जल संकट को देखते हुए जल आपूर्ति बोर्ड ने प्रोडक्शन की सभी मांगें फिलहाल के लिए खारिज कर दी। तो कैसे होगा ये सीक्वेंस पूरा, ये आगे पता चलेगा। पर उससे पहले ज्यादा चिंता ना करते हुए हम भी आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे हमारा अगला गाना। जी हाँ, सुधांशु राज खरे की आवाज में रूहदारी।

तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट इस समय अपने करियर के बेहद व्यस्त और दिलचस्प दौर से गुजर रही हैं। जी हाँ, एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच अब उनके नाम और एक और सरप्राइज जुड़ गया। खबर है कि वो कल्ट क्लासिक फिल्म तुम्बाड़ की सीक्वल तुम्बाड़ 2 में खास भूमिका निभाने जा रही है। हालांकि ये रोल कैमियो बताया जा रहा है, लेकिन इसकी अहमियत कहानी में काफी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि उनका किरदार फिल्म के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर नजर आएगा। आलिया ने मुंबई में मरल में 2 दिनों की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि मेकर्स को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो कम स्क्रीन टाइम में भी कहानी में गहराई रहस्य जोड़ सके। आलिया इस भूमिका के लिए एकदम फिट मानी गई, क्योंकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस मजबूत है और वो छोटे रोल में भी प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि उनका ये कैमियो तुम्बाड़ 2 के नैरेटिव में खास महत्व देने वाला है। और वहीं लव एंड वॉर में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल है। सूत्रों के अनुसार आलिया इस फिल्म में एक जाबाज सैनिक के रूप में नजर आएंगे। उनके करियर में ये पहली बार होगा जब वो युद्ध की पृष्ठभूमि वाले फिल्म में इस तरह का सशक्त किरदार निभाएंगी। फिल्म की शूटिंग फिलहाल मुंबई में चल रही है, जहां भारतीय सेना के विभिन्न विभागों मेस और कल्चरल एक्टिविटीज को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है। भंसाली की इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद संजीदा है, उन्होंने एक्टर से लंबी डेट्स भी ली है। और वहीं इसके अलावा आलिया की अल्फा भी काफी चर्चा में है, जिसमें वो एक स्पाई का रोल निभा रही होंगी। इसके लिए उन्होंने खास ट्रेनिंग ली है और कई एक्शन सीक्वेंस भी शूट किए हैं। फिल्म की शूटिंग अब अंतिम दौर में है और आलिया अपना मुख्य हिस्सा शूट कर चुकी है। अल्फा के अनुभव ने आलिया को लव एंड वॉर में काफी मदद भी की। फिलहाल तीनों फिल्म जो है वो हम जो भी आलिया के फैंस हैं उन तीनों फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, और फिलहाल के लिए इंतजार तो रहेगा ही, तभी तो एकदम टॉप नॉच चीजें हमें देखने को मिलेंगी बड़े पर्दे पर। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की आवाज में सुन लेते हैं फिल्म 3-2 से हमारा अगला गाना। जी हाँ, खूबसूरत।

इस बहुत ही प्यारे से गाने के बाद चलिए सीधे चलते हैं गवर्नर की ओर। अरे भाई डरिए नहीं, विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द साइलेंट सोवेनियर गवर्नर के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ जी, इस फिल्म का पोस्टर सामने आने के बाद से ही से लेकर काफ़ी चर्चा है। अब मेकर्स का ने इसका दमदार टीजर भी जारी कर दिया है जो बेहद दिलचस्प और आंखें खोलने वाली है। द साइलेंट सोवेनियर गवर्नर सच्ची घटनाओं पर आधारित और 1990 के दशक में भारत के सबसे बड़े आर्थिक संकट यानी कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन की कहानी को सामने लाती है। इसमें नेशनल अवार्ड विजेता अभिनेता मनोज वाजपेयी और एक RBL यानी कि राष्ट्रीय बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के रोल में है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया। गवर्नर का टीजर फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है और वो रिएक्शन देते हुए नजर भी आ रहे हैं। फिल्म को सनशाइन पिक्चर्स ने पेश किया है, इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया और चिन्मय मानलेकर ने डायरेक्ट किया है। असीमे शाह को प्रोड्यूसर है और इसकी कहानी सुवेंदु भट्टाचार्य, सौरभ भारत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने लिखी है। जावेद अख्तर की बोल और अमित त्रिवेदी के संगीत वाली ये फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होने वाली है। तो क्या देखेंगे आप, पॉलिटिकल थ्रिलर या? तो रेडी हो जाइए इस फिल्म के लिए 12 तारीख को। फिलहाल के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं जयेश भाई जोरदार फिल्म से फायर क्रैकर।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: इस छोटी से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है 107 FM रेनबो पर। और जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून किया उन्हें बता दूं कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का, जहां होती है बॉलीवुड हॉलीवुड की मसालेदार खबरें, फिल्म रिव्यूज और कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, ढेर इस बारे में ढेर सारी बातें, साथ ही साथ हमारे जबरदस्त तड़ाकेदार भड़ाकेदार गाने भी। तो चलिए अब सीधे एक छोटी सी फिल्म रिव्यू कर लेते हैं। जी हाँ, इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म एक दिन एक बार फिर ये याद दिलाती है कि किसी भी प्रेम कहानी की असली ताकत उसके किरदारों के बीच की स्पार्क में होती है। और अफसोस की बात है कि यही स्पार्क इस फिल्म में सबसे ज्यादा गायब नजर आती है। निर्देशक सुनील पांडे ने फिल्म को जापान के खूबसूरत लोकेशंस पर रचा है। बर्फ से ढकी सड़कों और शांत दृश्यों के बीच ये फिल्म आंखों को तो सुकून देती है, लेकिन दिल तक पहुंचने में कहीं ना कहीं चूक जाती है। कहानी दिनेश और मीरा के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका किरदार निभाया जुनैद खान और साई पल्लवी ने। दिनेश एक अंतर्मुखी की युवक है जो अपनी सहकर्मी मीरा से चुपचाप प्यार करता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा एक दुर्लभ बीमारी यानी कि ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनीशिया से जूझने लगती है, जिसमें उसकी याददाश्त हर दिन मिट जाती है। यहाँ से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। दिनेश की ख्वाहिश कि मीरा उसे सिर्फ एक दिन के लिए ही सही लेकिन प्यार करे, और यही ख्वाहिश कहानी को एक भावनात्मक दिशा देती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो साई पल्लवी अपने हिंदी डेब्यू में ईमानदार नजर आती है। उनकी मासूमियत और भावनात्मक अप्रोच कई सीन में असर छोड़ती है। वहीं जुनैद खान सादगी के साथ अपने किरदार को निभाते हैं, लेकिन स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी उतनी मजबूत नहीं बन पाती है, दर्शक पूरी तरह जुड़ नहीं पाते। और फिल्म की सबसे बड़ी कमी है माफ कीजिएगा, दोनों के बीच की केमिस्ट्री। कहानी बार बार यही कहती है कि प्यार ये प्यार है, लेकिन महसूस कहीं नहीं होता, और यही वजह है कि कई सीन भावनात्मक होने के बावजूद असर नहीं छोड़ पाते। तकनीकी रूप से फिल्म काफ़ी मजबूत है, सिनेमाटोग्राफी इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है। जापान के खासकर होकाइडो के बर्फीले दृश्य को एक विजुअल ट्रीट बना देते हैं, लेकिन यही खूबसूरती कई बार कहानी पर हावी हो जाती है और फिल्म एक ट्रैवल ब्रोशर जैसी लगने लगती है। और संगीत की बात करें तो अरिजीत सिंह का गाया एक गीत अच्छा लगता है, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद ज्यादा देर तक साथ नहीं रहता। एडिटिंग और पेंसिंग फिल्म को और धीमा कर देता है, जिससे कई जगह कहानी खींची हुई महसूस होती है। तो फिलहाल अगर आप एक दिन देखना चाहते हैं तो इरादे साफ है कि ये सादगी भरी भावनात्मक प्रेम कहानी कहना चाहती है, लेकिन कमजोर केमिस्ट्री, धीमी गति और अधूरी भावनात्मक पकड़ के कारण ये दर्शकों के दिल में गहरा छाप नहीं छोड़ पाती है। ये फिल्म खूबसूरत जरूर है, लेकिन उतनी ही जल्द भूल भी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे इसकी कहानी की नायिका, जो हर सुबह कुछ न कुछ भूल जाती है। फिलहाल हम भी रिव्यू के बारे में हमने बात कर ली, एक दिन का रिव्यू कर लिया, बता दिया आपको कि किस तरह की फिल्म हो सकती है, और अगर देखना चाहे तो देख ही सकते हैं। फिलहाल मैं तो सोच रही कि अगला गाना, जब रोमांटिक फिल्म की बात हो रही तो एक रोमांटिक सा गाना भी सुन लेते हैं। बाहर भी बारिश हो रही है, तो अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में, धुरंधर से।

दोस्तों अब ओटीटी की दुनिया से एक बड़ी खबर आई है। जी हाँ, दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि इंस्पेक्टर अविनाश का दूसरा सीजन एक बार फिर एक्शन और सस्पेंस के साथ वापसी के लिए बिल्कुल तैयार है। रणदीप हुड्डा की ये चर्चित क्राइम थ्रिलर सीरीज 15 मई 2026 को ओटीटी पर रिलीज होने वाली है और खास बात यह कि इससे के सभी एपिसोड एक साथ स्ट्रीमिंग के लिए बिल्कुल उपलब्ध होंगे। इस सीजन की कहानी हमें फिर से ले जाती है 1997-98 के उत्तर प्रदेश में, एक ऐसा दौर जब अपराध, माफिया और अवैध हथियारों का जाल अपने चरम पर था। कहानी के केंद्र में है इंस्पेक्टर विनाश, जिनका किरदार निभा रहे रणदीप हुड्डा। इस बार कोई नई स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की कमान सौंपी गई है और उनका मिशन है राज्य में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाना। ये सीरीज सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और उत्तर प्रदेश के सुपर कॉप अविनाश मिश्रा की जिंदगी पर आधारित मानी जा रही है, जो इसकी कहानी को और भी दमदार बनाती है। सीजन टू में खतरे पहले से कहीं ज्यादा बढ़े हैं। दुश्मन रणदीप हुड्डा को एक बार फिर अपने रफ और टफ अंदाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के साथ दर्शकों को बांधने के लिए बिल्कुल तैयार है। स्टारकास्ट की बात करें तो इस बार उनके साथ नजर आएंगे उर्वशी रौटेला, अमित सियाल, अभिमन्यू सिंह, रजनीश दुग्गल, शालीन भनोट और फ्रेडी दारूवाला जैसे कलाकार, जिनके किरदार इस कहानी को और परतदार बनाएंगे। इस सीरीज को लिखा है निर्देशक और निर्देशित किया है नीरज पाठक ने, जिन्होंने पहले सीजन में भी अपने निर्देश से दर्शकों को प्रभावित किया था। ट्रेलर में दिखाया गया एक्शन सीक्वेंस, तेज तरार डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक पहले ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ट्रेलर शेयर करते हुए साफ संकेत दे दिया है कि इस बार खेल बड़ा है भाई, दुश्मन ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इंस्पेक्टर अविनाश भी पूरी तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरा सीजन भी पहले की तरह दर्शकों का दिल जीत पाता है या फिर कहानी इस बार कोई नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। फिलहाल वो आने वाला टाइम बताएगा, पर हम मूड में हैं भाई बादशाह और सुनिधि चौहान का जो गाना है ये सुनाने के लिए।

चलिए एक और बॉलीवुड अपडेट आपको दे देते हैं। बॉबी देओल का नया अवतार अब बॉक्स ऑफिस पर एक और दिलचस्प एंट्री होने वाली है, क्योंकि बॉबी देओल अपनी अगली फिल्म बंदर के साथ वापसी के लिए तैयार है। इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी सानिया मल्होत्रा। एनिमल में अपने खतरनाक विलन अवतार और ओटीटी पर बाबा निराला जैसे किरदारों की पहचान बना चुके बॉबी देओल इस बार फिर भी कुछ अलग लेकर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में उनका किरदार पहले ही कहीं ज्यादा डार्क और परतदार होगा। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अनुराग कश्यप, जो अपनी अलग तरह की कहानी और रॉ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में फिल्म का एक नया पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें बॉबी देओल का लुक काफी चर्चा में है। हाथ में गिटार, शिमरी कपड़े, डिस्को स्टाइल, पहली नजर में एक चमकदार दुनिया का हिस्सा लगता है, लेकिन कहानी इसके ठीक उलट के गहरे अंधेरे की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉबी में फिल्मों का एक टीवी एक्टर का किरदार निभाया है, जिस पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गंभीर अपराध का आरोप लगता है। यानी ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं, बल्कि एक गिरते हुए स्टार की कहानी है, जहां शोहरत, सच्चाई और आरोप आपस में टकराते हैं। तो आप सभी सोच रहे हो कि टीजर कब आएगी। जी हाँ, फिल्म का टीजर 7 मई 2026 को रिलीज किया जाएगा, यानी कि आज ही के दिन। मेकर्स के अनुसार सुबह करीब 11 बजे इसे हमारे सोशल मीडिया पर दर्शकों के लिए जारी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है और इसे और भी ज़्यादा इंटेंस बना देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बंदर में बॉबी देओल का ये नया अंदाज दर्शकों को कितना पसंद आता है। लेकिन एक बात साफ है, इस बार कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं, बल्कि एक ऐसा है जो सच्चाई की भी होने वाली है। फिलहाल टाइम हो गया है 3:50 और फटाफट हम चलते हैं आगे और सुन लेते हैं अरिजीत सिंह और पलक मुचल की आवाज में तेरी मेरी कहानी।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 3:55, जस्ट कुछ ही सेकंड्स में होने वाले हैं। और अब चलिए बॉलीवुड की बातें तो हो गई, अब थोड़ी सी फैशन वर्ल्ड की खबर ले लेते हैं। इस साल मेट गाला 2026 में भारतीय अंदाज ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रेड कार्पेट पर जब करण जौहर और मनीष मल्होत्रा उतरे तो उन्होंने सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक को ग्लोबल मंच पर पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश किया। करण जौहर का लुक हमेशा की तरह क्लासी और स्टेटमेंट से भरा था। ट्रेडिशनल सिलुएट में मॉडर्न टच, यानी ऐसा मेल जो इंटरनेशनल फैशन की भाषा भी समझता और अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहता है। वहीं मनीष मल्होत्रा ने अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ भारतीय कारीगरी की बारीकी को सामने रखा। उनके आउटफिट में कढ़ाई, टेक्सचर, डिटेलिंग ऐसी थी जो दूर से नहीं करीब से भी देखने लायक थी। इस बार मेट गाला की थीम भले ही ग्लोबल रहा हो लेकिन इन दोनों ने अपने अंदाज से ये दिखा दिया कि भारतीय फैशन किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बराबरी से खड़ा हो सकता है और कई बार उसे आगे भी निकल सकता है। सोशल मीडिया पर भी इनके

की काफी चर्चा हो रही है। फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि एक कल्चरल स्टेटमेंट है जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ चलती नजर आती है। कुल मिलाकर मेट गाला 2026 में इस बार भारतीय मौजूदगी सिर्फ दिखी नहीं बल्कि याद भी रखी गई। फिलहाल के लिए ये थी आज के दिन के तड़के में तड़कते भड़कते हमारे कुछ बॉलीवुड और मसालेदार न्यूज। फिलहाल वापस कल हम मिलेंगे और दिन का तड़का में वापस ढेर सारी बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों ओटीटी की चर्चा होगी, बातें होंगी, लेटेस्ट रिलीजेस की बातें करेंगे। पर क्या हाल रहेगा लेटेस्ट रिलीजेस का उसके बारे में बातें करेंगे। पर फिलहाल के लिए जाना होगा, जी हाँ, क्योंकि वापस मिलूंगी ना बहुत जल्दी FM गोल्ड पर 5:20 पर लेकर जायन क्लासिक्स। ढेर सारी बातें होंगी, कदमों की बातें होंगी, ढेर सारी बातें होंगी, साथ ही साथ भाई फोन कॉल्स भी लेंगे आपकी, जी हाँ, बातें करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, हम उन गानों को भी बजाएंगे जैसा पहले था। और तो उसके बाद फिर 7 बजे से यहाँ पर छाया लुक, उसमें भी ढेर सारी बातें होंगी और फोन कॉल्स भी लिए जाएंगे आपके, गाने रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं। फिलहाल के लिए इसीलिए वापस से मिलने की आशा रखते हुए, वापस से ढेर सारी बातें करने की आशा रखते हुए मैं पापिया लेती हूँ 107 FM रेनबो में फिलहाल के लिए विदा। मिलते हैं कल वापस दिन का तड़का में ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और जाते जाते अमित मिश्रा, अनुष्का मनचंदा और अंतरा मित्रा के आवाज़ में मन माय इमोशन जागे।

0: enjoy that. But before that, we are going for a short, teeny weeny break. So you don't go anywhere.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है 107 FM रेनबो पर आप सभी का। मैं वापस हाजिर हो गई हूँ 107 FM रेनबो पर लेकर छाया लोक, और आज है थर्सडे का दिन, यानी कि होगा
3: नजारा फिल्मों का,
2: एकदम नजारा फिल्मों का, जहाँ बातें होंगी फिल्मों के बारे में, फिल्मों के सीन्स के बारे में, और साथ ही साथ लेंगे आपके रिक्वेस्ट भी, आपकी बातें भी सुनेंगे और मजेदार गाने भी सुनेंगे। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि सिनेमा हमसे एक खेल खेलता है, एक ऐसा खेल जहां आंखें खुली होती है पर सच छुपा रहता है। स्क्रीन पर सब कुछ सामने होता है, हर चेहरा, हर लम्हा, हर एहसास, फिर भी कहानी का असली मोड़ आखिर तक हमसे दूर रहता है, और जब वो मोड़ आता है तो सिर्फ कहानी नहीं बदलती, हमारी सोच बदल जाती है। आज का सफर उन फिल्मों का है जहां कहानी ने हमें धोखा दे दिया। अरे डरिए मत, हम उस धोखे को, जो कहानी ने हमें धोखा दिया, उस धोखे को दिल से एक्सेप्ट भी कर लिया है। यही है ट्विस्ट जो किसी ने सोचा नहीं। बात करेंगे ऐसे फिल्मों की, ऐसे थ्रिलर मूवीज की या सस्पेंस मूवीज की, जिसकी जो एंडिंग्स है, जिसकी जो आखिरी जो क्लाइमेक्स है, उसको हमने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। जी हाँ, ऐसे ही फिल्मों के बारे में बातें होगी ना सारा फिल्मों में। साथ ही साथ आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी फिल्म आपने देखी थी जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म उस तरह से उसका एंड होगा। जी हाँ, ट्विस्टेड एंड, यानी कि कुछ सरप्राइज दे दिया हो उसके एंड ने, ऐसी कहानी के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1950s-60s की फिल्म मधुमती से। तेज बारिश, पहाड़ों के बीच टेढ़ा मेरा रास्ता, और एक आदमी जो जैसे किसी चीज से भाग रहा हो, हवा उसके कपड़ों को झकझोर रही है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, तभी बिजली चमकती है और दूर एक सुनसान हवेली नजर आती है। वो दरवाजा खोल कर अंदर आता है। अंधेरा, जाले, खामोशी, टॉर्च की रोशनी दीवारों पर फिसलती है और फिर रुक जाती है एक तस्वीर पर। तस्वीर में एक लड़की, मासूम चेहरा, जैसे वो देखता है उसका चेहरा बदल जाता है, हैरानी, पहचान, डर, सब एक साथ, और यहीं से अतीत खुलने लगता है। हरे भरे पहाड़, वही लड़की, वही एहसास, धीरे धीरे समझ आता है ये कोई नई कहानी नहीं, ये वही कहानी है जो कभी खत्म हुई ही नहीं थी। फिलहाल जिसने देखी है वो तो जानते ही, और नहीं देखी तो फिर देख सकते हैं, और हमारा काम तो हमने कर दिया। फिलहाल हम सुनाएंगे आपको मधुमती फिल्म से ही लता मंगेशकर और मुकेश के आवाज में ये गाना।

तो बात करते हैं अब अगली फिल्म के बारे में। रात का सन्नाटा, धुंध इतनी गहरी कि सामने का रास्ता भी नहीं दिखता। दूर कहीं से एक दर्द भरी आवाज, जैसे कोई रो रहा हो या पुकार रहा हो। एक आदमी उस आवाज के पीछे चलता है, हाथ में लालटेन, दिल में डर। पैरों की परछाइयां हिलती हैं, जैसे कोई छिप कर देख रहा हो। अचानक एक सफेद साया सामने आता है, वो रुक जाता है, सांसें थम जाती है। पूरी कहानी आपको यकीन दिलाती है कि ये कोई आत्मा है, लेकिन जब अंत सामने आता है तो पता चलता है डर का चेहरा इंसानी भी होता है। बात कर रही हूँ फिल्म 20 साल बाद की। तो चलिए बात करते हैं

तो यूं ही चलते चलते बढ़ते हैं अगली फिल्म की ओर, जो है गुमनाम। समंदर के बीच एक टापू, कुछ लोग जो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, एक बड़ा सा घर जहां सबको ठहराया जाता है। पहले सब नॉर्मल लगता है, फिर अचानक फोन बजता है, एक एक करके सब मरेंगे। हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन कुछ देर बाद पहली मौत फिर दूसरी, हर चेहरा शक में बदल जाता है, दोस्ती खत्म, भरोसा खत्म। आखिर में जब कातिल सामने आता है तो एहसास होता है खतरा बाहर नहीं, हमेशा से यही था। तो ये थी फिल्म गुमनाम। तो चलिए ऐसे ही फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो थ्रिलर सस्पेंस जो कि जिसकी जो एंडिंग्स थे वो ट्विस्टेड थे। आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये फिल्म इस तरह से खत्म होगी। तो आपके लिए, आपके हिसाब से आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी है जिसकी एंडिंग काफ़ी सरप्राइजिंग लगी हो आपको, बड़ी अलग लगी हो, बड़ी ट्विस्टेड लगी हो, जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये फिल्म इस तरह से ख़त्म हो सकती है। ऐसी फिल्मों के बारे में हम बात कर रहे हैं, और आप भी हमें कॉल करें और बताएं कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको देख के आप सरप्राइज रह गए एट द एंड। फिलहाल के लिए मोहम्मद रफ़ी और महमूद की आवाज़ में गुमनाम फिल्म से सुन लेते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही थू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

ताली तग झुम तग ताली तग झुम तग झाला आम तग झुग तग ताली के नग तग नाक तग झुम तग नाक नाक झुम तग नाक नाक झुम तग नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन जाने को गुजारी दाबु तारी के ता झम तारी ता झग तारी ता झन जाने को गुजारी दाबु तारी के ता झम तारी झग तारी ताक ताक ताक झम तारी झग तारी जाने जाने को

अब चलिए सीधे तीसरी मंजिल की ओर। रंगीन दुनिया, क्लब, म्यूजिक, डांस, सब कुछ हल्का और खुश मिजाज। लेकिन एक हादसा, एक लड़की की मौत और कहानी अचानक अंधेरी हो जाती है। जांच शुरू होती है, हर किरदार पर शक जाता है, छोटे छोटे इशारे, अधूरी बातें, पर एंड में जब सच सामने आता है तो वो इंसान जिसे आपने कभी सस्पेक्ट ही नहीं किया था वो कल्प्रिट निकलता है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हुए तीसरी मंजिल की मंजिल फिल्म से सुन लेते हैं मेरे शोनारे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आपसे, हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर आपने जो फिल्में देखी, कोई ऐसे सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखी है जिसके जिसके जो ट्विस्ट है, जिसके जो एंडिंग है, जिसमें जब आखिर में वो फिल्म पहुंचता है तो वो एक अलग ही मोड पर चला जाता है, एक ट्विस्टेड एंड जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऐसा एक एंड आपको देखने को मिलता है उस फिल्म में, तो उस बारे में बातें हो रही। तो ऐसी कौन सी फिल्म आपने देखी है जिसको, जो फिल्म को देखते देखते आखिर तक आप काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए थे कि ये फिल्म ऐसे कैसे ख़त्म होगी, ये तो सोचा ही नहीं था, ऐसी वाली फिल्म कब आई, कौन सी फिल्म देख के, बस यही जानना है फिलहाल के लिए। आप, हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं।

अब आगे बढ़ते हैं, फिल्म ज्वेल थीव के बारे में बात कर ली थोड़ा। चलिए इसके कुछ सीन्स के बारे में बातें कर लेते हैं। एक आदमी पर इल्जाम लगता है चोरी का, क्यों? क्योंकि उसका चेहरा असली चोर से मिलता है। पूरी कहानी पहचान के खेल में उलझती जाती है। कभी वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, कभी उसे लगता है शायद वो खुद ही नहीं जानता कि वो कौन है। और अंत में जब सारे चेहरे उतरते हैं तो असली खेल भी सामने आता है। तो देखिए आपने ज्वेल थीव? अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए, अगर देखी है तो हमें फोन करके बताइए भी कि आपने देखी है फिल्म। फिलहाल आपके इंतजार में सुनते हैं ज्वेल थीव फिल्म से हमारा अगला गाना।

तो दोस्तों कॉल करके बताइए कि कौन सी फिल्म, थ्रिलर फिल्म जिसकी ट्विस्टेड एंड आपको बिल्कुल अचरज में, अपने सरप्राइज में डाल के चली गई। फोन नंबर 224-2213-1341। जी हाँ, फोन लाइन्स खुली हुई हैं आपके लिए। और अब चलते हैं सीधे पुराने फिल्मों से 90s की तरफ। फिल्म बाजीगर, जहाँ ऊंची इमारत की छत हवा चल रही है, दो लोग प्यार भरोसा मुस्कान की बातें कर रहे हैं, लेकिन लड़की रेलिंग के पास खड़ी होती है, लड़का उसके करीब आता है एक पल और सब कुछ शांत। अगले ही पल धक्का, लड़की नीचे गिरती है और ऊपर खड़ा लड़का बिल्कुल शांत। यही समझ जाता है ये कहानी प्यार की नहीं बदले की है। जी हाँ, फिलहाल चलिए इसी बात पर फिल्म बाजीगर का सुन लेते हैं ये गाना विनोद राठौर की आवाज में।

0: तो चलिए हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए देखते हैं कौन है और क्या बताना चाहते हैं वो। हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: जी धन्यवाद दीदी,
0: कैसे हैं आप बताइए।
1: जी एकदम मस्त है, स्वस्थ है, जबरदस्त है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइए।
1: मैं पारस पंडित चुचरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: जी पारस जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ कि बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद छाया लोक में।
1: बड़े धन्यवाद।
0: घर परिवार में सब ठीक है ना।
1: जी दीदी सब ठीक है।

0: मिलकर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बताइए कौन से फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे आप हमें?
0: सबसे पहले तो थ्रिलर फिल्मों में गुप्त है, जिसमें बहुत ही उम्दा रूप से दिखाया गया है। इसके डायरेक्टर शायद राजीव राय, और इसके अलावा है पुराने फिल्म में महल है, उसके बाद आपका 36 चाइना टाउन, और एक फिल्म है अक्षय कुमार और बॉबी देओल अभिनीत अजनबी।
1: अच्छा,
0: उसमें भी एक थ्रिलर टाइप ही दिखाया गया था, बहुत ही उम्दा किस्म से दिखाया गया था थ्रिलर टाइप।
1: ओके ओके, तो फिर आपको अच्छी लगती है, आपको कौन से जॉनर की फिल्में अच्छी लगती है? मतलब थ्रिलर अच्छी लगती है, सस्पेंस थ्रिलर अच्छी लगती है, एक्शन, रोमांटिक?
0: प्लस रोमांटिक,
1: रोमांटिक,
0: हाँ रोमांटिक, थ्रिलर, सस्पेंस।
1: तब तो गुप्त एकदम सही है, नहीं सोल्जर गुप्त
0: सही है, रोमांटिक भी है और आपका म्यूजिकली हिट भी है और स्टोरी भी बहुत अच्छी है।
1: ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए।
0: अजनबी, अजनबी भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: अच्छा,
0: अजनबी भी, अजनबी भी पूरा एकदम मस्त पिक्चर था, 100% एकदम मस्त।
1: हमराज भी फिर अच्छी लगी होगी आपको?
0: हमराज भी बहुत ही अच्छा पिक्चर था।
1: ठीक है वारिस जी, चलिए थैंक यू सो मच। कौन सा गाना?
0: मेरी बेटी आपसे थोड़ा बात करना था।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: चुप हो गए, अब नहीं बोल रहे अभी इतना तो से बोले बोलो
1: नाम
0: नाम बता नाम बता लो नो नाम बता हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो हेलो
1: नहीं बोले। अच्छा आप ही बता दीजिए उनका नाम।
2: मम्मी से बात करें,
0: तुम बात करो, तुम बात करो। इसका नाम सुहानी पंडित है दीदी।
1: सुहानी हाय, कैसे हो?
0: बोलो अच्छे है?
1: अच्छे हो। पढ़ाई कैसी चल रही है? खेल पढ़ाई से ज्यादा मस्ती कैसी चल रही है बताओ?
2: अच्छी चल रही है।
1: अच्छी चल रही है। किसको परेशान करते हो ज्यादा, पापा को मम्मी को?
2: किसी को भी नहीं।
1: या फिर वो दोनों मिलके आपको परेशान करते हैं?
0: नमस्ते बोला, नमस्ते बोला,
1: नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। कौन से क्लास में पढ़ते हो सुहानी आप?
0: बोलो।
1: थ्री में। ओ माँ, बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, है ना, बिग गर्ल।
0: ओके दीदी, धन्यवाद।
1: ओके चलिए पारस जी, मिलते हैं फिर आपसे और सुनते हैं महल फिल्म से गाना, ठीक है?
0: ओके ओके, तो महल फिल्म का आएगा
1: आएगा। ओके चलिए सुनते हैं, ठीक है,
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू।

तो दोस्तों चलिए बैक टू बैक एक और गाना सुन लेते हैं। शांतनु घोष जी ने कॉल किया था बावरिया बाउल खाली से और सुनना चाहते हैं फूल और काठे का ये गाना प्रेमी आशिक आवारा। और इस गाने के बाद वापस हम आएंगे और अगली हमारे सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में बात जरूर करेंगे।

चलते हैं सीधे फिल्म खिलाड़ी की ओर, जहां एक दोस्तों का ग्रुप मजाक शरारत करते हैं नजर आता है। फिर होती है एक फेक किडनैपिंग प्लान, लेकिन खेल अचानक असली बन जाता है, एक हत्या हो जाती है। अब हर कोई शक के घेरे में है, दोस्ती टूटती है, भरोसा खत्म होता है और अंत में सच सामने आता है, खेल खेलने वाला ही खेल बन गया। फिलहाल हमारे पहले घंटे का जो है छायालोक का पहला घंटा यहीं ख़त्म होता है, और जाते जाते इस घंटे में सुनते हैं फिल्म खिलाड़ी से अभिजीत और अका यानिक की आवाज़ में हमारा अगला गीत है।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर।

बारे में, जिनकी जो एंड थे, जिनकी जो क्लाइमेक्स था, वो इतना ट्विस्टेड था कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये फिल्म ऐसे भी ख़त्म हो सकता है। इसमें अगर आपको कोई गाना रिक्वेस्ट करना हो या फिर ऐसे ही फिल्म के बारे में बात करनी है तो फ़ोन लाइंस खुली हुई है। फ़ोन नंबर है 2213-1341। मैं पापी हूँ आपके साथ और बात करूँगी फिल्म गुप्त के बारे में। वैसे ये फिल्म

काफ़ी हिट हुई थी उस वक्त। पूरी फिल्म एक सवाल के साथ चलती थी कि कातिल कौन है। हर किरदार संदिग्ध लगता था और फिर कोर्ट रूम, सबकी नज़र जज पर, नाम लिया जाता है और पूरा कमरा बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि वो नाम किसी ने सोचा ही नहीं था। तो देखिए, अगर आपने गुप्त फिल्म और इस तरह की सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो फ़ोन उठाइए और फ़ोन लगाइए हमें 2213134141 पर। बातें करते हैं, चलिए सुनते हैं गाने।

0: तो चलिए दोस्तों, इस घंटे के पहले कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखते हैं क्या बातें हो सकती हैं उनसे। हेलो,
1: गुड इवनिंग सफी जी।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका छायालोक में।
1: मैं मोनिरुद्दीन बात कर रहा हूँ
0: जी। मोनिरुद्दीन दा कैसे हैं, घर पे सब ठीक ठाक?
1: ऑफकोर्स, इसीलिए तो मैं बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे जाने का गम नहीं, तुम्हारा आने का आस रखता हूँ। आपका बॉयज इतना अच्छा है, हमेशा अपने सीने का पास रखता हूँ।
0: थैंक यू सो मच।
1: और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा ट्रॉपिक लाने के लिए, इतना बेहतरीन और इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रॉपिक।
0: थैंक यू
1: हमारे बोलने का मौका देने के लिए।
0: एकदम आपका प्रोग्राम है तो आप लोगों से सुनना हमें भी पसंद है बहुत है। आपके कॉल्स आते हैं, आपने इतना प्यार दिखाते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और हमारे अच्छा अच्छा दोस्त अच्छा अच्छा बातें बताया, इसलिए बहुत सारे दोस्त को थैंक करना चाहता हूँ।
0: थैंक यू सो मच।
1: मैं बोलना चाहता हूँ 2002 साल में रिलीज हुआ विक्रम भट्ट का फिल्म, महेश्वर का लिखा हुआ जो फिल्म है राज
0: जी,
1: वो ब्लॉकबस्टर फिल्म था, जहाँ आदित्य कैरेक्टर में दिनो मारिया था, आज संजना कैरेक्टर में भी पाशा बसु था
0: जी,
1: और एक कैरेक्टर में आशुतोष राणा भी था। तो आदित्य और संजना टूटा हुआ दिल को रिलेशन को जोड़ने के लिए उठी थे एक फैंटम हाउस या भूत का घर बोलता है बंगला में, वो भूतड़े बाड़ी से उठा है, जहाँ वो आमने सामने हुआ वो आदित्य का पहला प्रेमिक वो जो मोलिना शर्मा, वो परेशान करता है संजना को
0: जी।
1: बाद में संजना महसूस हुआ जे वो आता है आदित्य का पहला प्रेमिका, इसलिए संजना और आशुतोष राणा दोनों मिलकर जो करेक्टर था वो दोनों मिलकर वो आत्मा को शांत किया। दिस फिल्म स्पेशली क्रिएट ओ अमेरिकन सिनेमा व्हाइट व्हाट लाइज बीनीथ के बेस्ट फिल्म है।
0: अच्छा,
1: बहुत अच्छा फिल्म है। आपका पास है तो उसी फिल्म का कोई भी गाना खास करके आपके पैर में सबकने लगे ये सुने दीजिए प्लीज।
0: एकदम एकदम थैंक यू सो मच करने के
1: लिए।
0: वापस मिलते हैं, एकदम बिल्कुल आराम से स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं वापस। तो फिल्म राज से सुनना चाहते हैं मुनरुद्दीन दा आपके प्यार में, तो चलिए हम भी सुन लेते हैं।

0: चुरी के घड़ी में 8:18 और अभी होने वाला है एग्जैक्टली 19। तो चलिए देखते हैं हमारे साथ फोन कॉल्स पर हमसे कौन जुड़ चुके हैं। हेलो
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में। गुड इवनिंग।

0: तो चलिए हमारे अगले कॉलर भी इंतजार में हैं भाई, उनसे बात करके देखते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: जी हम बीआरटी से संतोष पाल बोल रहे हैं।
0: जी संतोष जी, कैसे हैं, घर परिवार में सब कैसे हैं, बताइए।
1: हम थ्रिलर फिल्म में मोहरा अच्छे लगते हैं, गुप्ता अच्छे लगते
0: हैं। ओके,
1: और मनोज कुमार की बहू कौन थी, गुमनाम
0: जी,
1: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी चॉइसेस आपकी फिल्म की। तो अभी देख, मतलब लास्ट कौन सी फिल्म देखी थी आपने?
1: लास्ट कौन सी, सोल्जर थी, सोल्जर भी अच्छी लगा।
0: अच्छा,
1: और मुझे एक गाना सुनना है।
0: बताइए।
1: मोरा फिल्म से तू चीज बड़ी है मस्त मस्त।
0: ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: ठीक है,
0: चलिए मिलते हैं। हाँ, फिलहाल चलिए सुन लेते हैं इनका रिक्वेस्ट के बाद गाना, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

0: 8:31 हो चुका है, यानी कि और बस 29 मिनट रह गए हमारे हाथ में हमारे और आपके साथ का। तो फोन कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, थोड़ा लेट आए पर दुरुस्त जरूर आए। फिलहाल चलिए हमारे साथ कौन है देख लेते हैं। हेलो,
1: हेलो, प्रणाम दीदी।
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बोलिए दीदी आप कैसे हैं, पहले आप अपना बताएं।
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोगों की दुआ है। आप लोग कैसे हैं ये बताएं।
1: हम तो बिल्कुल अच्छे हैं दीदी, और आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके भी परिवार में सभी अच्छे होंगे।
0: एकदम, बस आप लोगों की दुआ है कि हम सभी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ और मस्त है, एकदम
1: मस्त रहे बस। और आज मुझे एक फिल्म याद आ रही है, मैंने बचपन में अपने माँ के साथ देखी, में राजा और रंग।
0: अच्छा,
1: जिसमें वो बहुत ही भावनात्मक ऐसी पिक्चर थी, तो माँ भी मैं मुझे गोद में लेकर रोने लगी और मैं रोता था हॉल के अंदर। मैंने ये मैंने आज तक अभी मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन अभी मैं याद करता हूँ अपनी माँ को, जिससे मुझे माँ याद आ जाती है। और आज दीदी मैं अपना देश फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, सुन चंपा और सुन तारा, ये गीत आप बजाएं अगर तो अच्छा लगेगा मुझे।
0: ओके ठीक है, चलिए चलिए बजाते हैं आपके लिए ये गाना, और फिर मिलेंगे श्याम जी। ठीक है, आपको वो स्टेटमेंट एंट्री वाला जो डायलॉग था वो नहीं सुना हमने।
1: अच्छा फिर कभी सुनाऊंगा जरूर।
0: चलिए ठीक है, ठीक है जरूर।
1: खुश रहिएगा
0: एकदम। तो ये थे श्याम कुमार चंचल जी हमारे साथ, और फिलहाल थोड़ा सा लीक से हट के जो बात चल रही है, जिस विषय पे बातें हो रही है उसे हट के थोड़ा सा उन्होंने बात कही और अपने इमोशंस को जाहिर किया, और इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए हमें, है ना।

इस बहुत ही प्यारे से गाने के बाद, आई मस्ट से कि क्यूट से गाने के बाद, चलिए हमारे फोन कॉल पर जो लिसनर वेट कर रहे हैं उनको हम ऑन एयर लेते हैं।

0: टाइम काफ़ी कम है और बातें ढेर सारी, तो ऐसे में देखते हैं कौन है फोन कॉल पर हमारे साथ। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छायालोक में।
1: नमस्कार दीदी भाई, हमें चुचुरो के अशोक कौर बोलती
0: जी। अशोक दा कैसे हैं, सब ठीक है? और बहुत बहुत स्वागत है आपका मोनो सेवन एफएम रेनबो पर भी।
1: ये आवाज ई 11 सोइचा धन्यवाद लेवेन,
0: थैंक यू।
1: अभी हेलो आती आओ बोल रहे बात। আমি সব থেকে ভালো ফিল্ম মধ্যে আমার করণ অর্জুন থেকে আমার খুব ভালো লেগেছিল ওর মায়ের রোল।
0: আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে ওকে। আর কোই গানা শুনতে চাইতে হ্যাঁ
1: গানা হচ্ছে কাল আর গোরাপি কে ধীরে ধীরে বল কই শুননা লে কই শুননা নেই তো চলে যা।
0: ঠিক আছে, চলি চলিয়ে শুনাতে হ্যাঁ কোই গানা। ওকে নমস্কার, নমস্কার, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ কল করার জন্য, গুড নাইট, মিলতে হ্যায় ফির। तो अशोक दा की रिक्वेस्ट पर चलिए सुन लेते हैं धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।
2: धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना।

0: चलिए टाइम कम और बातें ढेर सारी, इसीलिए तो फटाफट फोन कॉल लेना जरूरी है। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छायालोक में। हाँ पायल, कैसे हो? एकदम ठीक हूँ, बताओ।
1: तो
0: बताओ कौन सा फिल्म, कौन सा सस्पेंस थ्रिलर फिल्म तुमको बहुत पसंद है?
1: कौन सी फिल्म
0: आपको बहुत पसंद है, कौन सस्पेंस थ्रिलर मूवीटा खूब पसंद होता है? ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको देख के लगता है कि अभी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ तो होने वाला है अलग? अच्छा बताइए बताइए, तेरे नाम के बारे में बता रहे थे, बताइए बताओ। ঠিক আছে চলো, আর এক রিকোয়েস্ট তুমি কিয়া থা বীর জারা ফিল্ম সে হ্যাঁ না, তো উসকা গানা সুন লেতে হ্যায় ফির, ওকে আর মিলতে হ্যায় ফির কাল বাপস। থ্যাংক ইউ সো মচ কল করার জন্য, গুড নাইট। তো চলিয়ে সুন লেতে হ্যায় ঋত নারায়ণ কি আওয়াজ মে মে ইয়াহা হুম।

तो चलिए अब समय क्योंकि ख़त्म हो चला है तो आखिर में एक और फिल्म के बारे में मेंशन कर लेते हैं जो है हमराज़, एक और खूबसूरत प्रेम कहानी लेकिन इसके पीछे एक साजिश, लेकिन इस पैसा धोखा लालच सब मिलते हैं और जब लगता है कि सच सामने है तभी एक और सच सामने आता है, खेल अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे ही फिल्मों के बारे में और बातें होंगी और जी हाँ, स्पेशली द हॉरर मूवीज़ कल फिल्मों के और ऐसे ही हॉरर मूवीज़ के बारे में बातें होंगी, सस्पेंस थ्रिलर के बारे में बातें होंगी वापस छाया लोग में। तब तक के लिए मैं फ़िलहाल के लिए आपसे लेती हूँ विदा और हमराज फिल्म का ये गाना छोड़े जा रही हूँ आपके लिए और बने रही है समय एफएम रेनबो पर। थोड़ी ही देर में सुनेंगे अगला कार्यक्रम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और यूं ही बने रहे हमारे साथ।

आपके लिए हिंदी छाया छबिर गान सुनछि आरफ राजकुमार परगन अरिजित सिंह एवं पलक मुच्छलर कंठे अपने संगे आमी रयेछि उज्जवल।